सो ये जो प्रोग्राम है 95.1 FM ते एवरी थर्सडे 8 to 10 पेश किया जाता है। शुरू वक्त जो मैं प्रोग्राम शुरू करने तो पहला एक संबोधन करता हाँ सिख नौजवान सभा, तो यह सिख नौजवान सभा इसकी कोई मैंबरशिप इहदा कोई पैसा नहीं देना पैंदा। जो नौजवान इसनू लाइक करते हैं फॉलो करते हैं दास की हौसला अफजाई करते हैं इन्हां दे हौसले दे नाल इन्हां दी इनकरेजमेंट दे नाल दास इस मंच ते आउंदा है। बहुत सारे सज्जन हैं जिन्हां दा मैं नाम नहीं दस सकदा, कुछ स्टेट दे अंदर हैं वो इंटर स्टेट हैं, कुछ मैं नाम लिखे हैं जिहड़े हमेशा ही जिन्हां नाल मेरी मुलाकात हुंदी रहिंदी है जब बॉबी दे थ्रू मैनू मैसेज मिल जाता है।

0: जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी।
1: सिद्धू सिद्धू माया पुत, दरवाजा खोल। सिद्धू दरवाजा खोल, माया लगता है दरवाजा तोड़ना पैना है। महाराज भी उदी चोड़ी जहर पाउंदा जिदे बारे उनू पता होवे भी इदा कालजा जहर खपा।